0: Plug in to the latest in tech news and gadget reviews on Tech Talk.
1: OLED is the peak of panel technology. It's the creme de la creme. You know, it is first barrier of entry to OLED, and why you don't really see it around is because it's so costly. You know, if you want to buy a TV, you're thinking, you know, should I pay that $2,000 premium, you know, just to experience it? Will I enjoy it?
2: So come join me, Daniel Martin, for Tech Talk.
0: Weekdays, 3 p.m. and Sunday, 5 p.m.
3: And cubic feet. Its disruption is severely felt in Ferozabad, a major hub of traditional small-scale manufacturing. The city produces 70% of India's total glass output, earning it the title of the Glass City of India. They use a mix of piped natural gas, PNG, and liquefied petroleum gas, LPG, to fire clay furnaces, both of which are in short supply.
4: अरे 100 साल से यहाँ परिवार में मैग्नीस का काम हो रहा है और इन चीजों को शुरुआत में जो शुरुआत हुई है ये इसकी फर्नेस जो होती हैं मेरे कॉलेज चलती थी परंतु कॉलेज चलने के बाद जब ये टीटीजेड एरिया बनाया गया ताजमहल को सेव करने के लिए तो टीटीजेड एरिया बनाया गया इस टीटीजेड एरिया में ताजमहल के सराउंडिंग 70 किलोमीटर कोई भी ग्रीन गैस के अलावा तो 96 में सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड को गैस का प्रोविजन किया जिससे 2000 में ये गैस यहाँ पर आई। देखिए जब तक ये बार खत्म नहीं होता तो जब तक गैस का सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में नहीं आ सकती, क्योंकि जितने ये अपने देश हैं जहाँ लड़ाई चल रही है वहीं से गैस आती है। किताब सब लोग देख रहे हैं, कुछ करते हैं, बगैर गैस के हमारी फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। फरोजाबाद में करीब 2 से 8 फैक्ट्रियां हैं जो टोटल डिपेंड गैस के ऊपर है। लेकिन जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है हिंदुस्तान में जो गैस आती है वो कतर से ईरान इधर से आती है, इनके युद्ध शुरू होने से गैस का आना कम हुआ है। तो हम लोगों को जो आवंटन था डीसी के पर डे का मिलता था हमको, उसका 20% उन्होंने कट लगा दिया है। इट मीन्स 20% हमारा प्रोडक्शन कम हो गया, 20% लेबर बेकार हो गई।
3: गैस शॉर्टेजेस हैव लेड टू आइडल फर्नेसेस अक्रॉस द इंडस्ट्री। आउटपुट हैज रिड्यूस्ड बाय नियरली 40%, लीविंग मेनी वर्कर्स विदाउट जॉब्स।
4: गिलास बेंगी की फैक्ट्रियां हैं, इसमें जो है एक फैक्ट्री में 3 से डेली काम करते हैं पर डे, परंतु इसके जो प्रोडक्शन होता है, इसके डेकोरेशन और होता है, उसमें कम से कम 4 गुना एम्प्लॉयमेंट और होता है। मतलब एक व्यक्ति से लगभग 2000 एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो कि हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति इतनी कम पैसे में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। ये सब थोड़ी खासियत यहाँ पर है। हमको उम्मीद है कि ये युद्ध बंद हो जाएगा तो गैस की आपूर्ति फिर से दोबारा शुरू हो जाएगी, जिससे पूरा एम्प्लॉयमेंट हम दे सकेंगे और ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो गैस पूरा मिल जाए, इंडस्ट्री चले, एम्प्लॉयमेंट मिले, इसमें ही हमारी और देश की तरक्की।
3: इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। द एनर्जी स्क्वीज एक्सटेंड्स एवरीवेयर। अक्रॉस इंडिया अथॉरिटीज हैव इंट्रोड्यूस्ड एंटी होर्डिंग मेजर्स, इंक्लूडिंग अ 200 लीटर कैप ऑन डीजल परचेसेस एट फ्यूल पंप्स टू प्रिवेंट आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस एंड प्राइस हाइक्स। The crisis underscores India's dependence on fossil fuels, which still meets around 80% of its energy needs.
5: India is the hungriest market for energy, and you name the source of energy and India wants it. India needs it. We consume roughly 5.8 million barrels of oil every day. And bulk of that, roughly 5.2 million barrels, is imported. We also have 700 million Indians who are still living below energy poverty line. The backbone of India's energy security, energy prosperity, that is fossil fuel. India is urbanizing very, very fast. The growth of India, the story of India, is still driven by fossil fuel. What we have witnessed the last 7 to 10 years, the expansion of LPG in a very big way, probably the fastest growing LPG market in the world. And today we have roughly 340 million LPG connections across the country. As part of the government initiative, the government decided that every single household must have access to cooking gas. And so this scheme was heavily subsidized, heavily campaigned by

0: China wants more marriages and births, but this push is fueling debate over gender roles.
1: 男主外女主内这种理想一直都没有改变。
2: 如果说结婚要让我放弃我现在的生活模式的话，其实我就是真的不太想结。
0: What's behind the growing divide between what Chinese women and men want?
3: 社会上对男性的要求是过高的，对于女生的要求是几乎没有的。
4: 但凡沾到女性站出来讲话这个点，她就会觉得你是一个女权。
0: Insight Thursday on CNA.
5: This week on Singapore Hour. Planning a trip to Singapore? Step into these heritage hotels for a stay like no other.
6: I feel like I stepped into 100 years ago.
7: Quite cool, huh?
5: And stop over at this Insta-worthy neighborhood where tradition thrives and subcultures find their stage.
8: Kampung Glam represents a very different side that you don't really get to experience in Singapore.
5: Your Insider's Guide on Singapore Hour, Friday on CNA.
9: I've heard about the stress that has got to you three.
10: This week on Yes, Captain!
11: We have a new inmate today.
12: Abad! Hey! Stop!
9: You three, are you still not talking to each other? You guys need to fix this.
13: Another day, another screw.
14: Hey! Abu will die, and so will all of you!
10: Yes, Captain! Monday to Thursday, 8:30 p.m. on 5.More episodes of Yes, Captain are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric StarMax Aircon.
15: March 2026. LPG and LNG shipments from the Gulf to India have been disrupted by the blockade of the Strait of Hormuz. The disruption has triggered an energy crunch.With long queues for cooking gas cylinders across the country. But in one rural setting, a quiet energy revolution is underway. Housewives like 32-year-old Mitlesh Yadav are making a transition to renewable energy.
16: जब ये था कि पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे और LPG से, तो हम जैसे धुआं होता था, परेशानी बनती थी, हमें टाइम ज़्यादा लगता था.तो अब हम इस पे बनाते हैं तो अपने कभी भी कुछ भी काम करते हैं मतलब गैस बंद करी अपना काम कर लिया और चूल्हे का काम ये था कि परमानेंट पहले चूल्हे का ही ख़त्म करना है गैस की मतलब एलपीजी की ये दिक्कत थी कि कभी सिलेंडर ख़त्म हो गया तो फिर हमें चूल्हे पे खाना बनाना है अब इस मतलब जब से ये गैस लगी है ना तब से हमें कोई परेशानी नहीं है तब से हम कंटिन्यू इसी पे खाना बनाते हैं टाइम टू टाइम मतलब एलपीजी से तो कम ही लगते हैं एलपीजी से तो जैसे कि एक सिलेंडर हमारा 20 दिन चलता है अब हमें सिलेंडर भरवाने की तो टेंशन है ही नहीं
15: Switching to the biogas system was her husband Arjun Yadav's idea.
17: सुबह को डेली गोबर उठा के इसमें इकट्ठा करके और उसको पानी के द्वारा मिक्स करते हैं घोल के वो उसके बाद इस डाइजेस्टर में जाता इसे हटा देते हैं इस तरह से अपने आप ही डाइजेस्टर में चला जाएगा ये इसका डाइजेस्टर है इसमें जो डाइजेस्ट होता इसमें डाइजेस्ट होने के बाद उसकी मीथेन गैस जो बनती है बायोगैस वो इस पाइप के द्वारा ये इसका गैस का पाइप है आउटपुट जो हमारा गैस इससे हमें ओवर फ्लो होती है ना इसमें गैस ज़्यादा बनती है हमने यूज नहीं करी कभी तो इससे वो ये है सेफ्टी वाल से बाहर निकल जाती है वो हानिकारक गैस होती है वो यहीं फिल्टर हो जाती है आगे नहीं जाती है जो चूल्हे के बर्तन को काला करती है फिर उसके बाद गैस घर में रसोई में काम आ जाती है
15: The cow dung slurry that comes out as a byproduct from the methane digester provides additional benefits to this farming family.
17: और जो इसकी स्लरी निकलती है वो हमारे खेत में डलती है जिससे जो हमारा यूरिया डाई उसका जो कंजप्शन 25% रह जाता है जो पहले हम 100 केजी लगाते थे उसका 25% ही लगता है यानी कि 25 केजी और अच्छा रिजल्ट है इसका जो स्लरी का यानी कि 75% खाद बचत है और गैस का तो 100% बचत है गैस की तो एक साल से डेढ़ साल में इसकी कीमत रिटर्न हो गई हमें एक से डेढ़ साल में इसकी जो कीमत हमने लगाई थी वो तो रिटर्न हो गई अब तो फायदे फायदे का सौदा है अब कोई वो नहीं है
15: Since the 1980s, the Indian government has promoted biogas as a low-cost rural energy source. More than 5 million digester units have been installed across the country.Converting farm waste into methane for cooking.
7: every country who are dependent on the fossil fuels from the outside, they are facing the challenge. The government of India introduced Govardhan, Galvanized Bio-Agro Resource Dhan policy, promoting small-scale, medium-scale biogas plant. India has a huge potential. India can generate around 62 million metric ton CBG per annum. They have set a target to install 5,000 CBG project. And as per some current estimate, around 130 or 140 plant has already been set up. We can generate the gas in the village level that can be supplied to fulfill the requirement of our village. We have a huge potential to generate the CBG. So that will create long-term impact to reduce our import bill. It's a sustainable solution. We can also reduce our fossil fuel dependency. And we can also improve our air quality by, you know, reducing the burning of this agriculture residue.
15: Known as the food basket of India, the Indian state of Punjab is beset with the problem of stubble burning. Stubbles, or the short leftover stalks of crop plants, such as wheat, rice or corn, remain rooted in the ground after the main grain or harvest is collected. Amongst many farmers, burning them is considered an efficient method to clear their fields for the winter sowing season. Stubble burning is a major contributor to poor air quality across northern India. One study estimates crop residue burning caused 44,000 to 98,000 premature deaths annually in India between 2003 and 2019. What is burned as agricultural waste in Punjab province can also be used as a source of energy. In the city of Sangrur, Pankaj Jain oversees how paddy straw is converted into compressed biogas, or CBG, on an industrial scale.
18: Our core focus is paddy straw. And why paddy straw? Because as of now, paddy straw has no solution. Farmers has no solution. In case we won't take it, then they have to burn it or maybe in situ it. So that's why, to avoid stubble burning, our main focus is the paddy straw. But yes, we can use other agriculture residues also, like the wheat straw, we can use the maize straw, we can use the sugarcane straw. The raw biogas which is coming comes into these units. These are the gas purification units. So these are the two columns in these units. First process is the absorption of CO2, and raw biogas becomes purified. And then there is a further removal of H2S and moisture in this gas purification unit, and the pure biogas or the CBG comes from through this pipeline. After this pipeline, it goes into those compressors where we compress the gas to 250 bars.
15: The Verbio facility is Asia's largest compressed biogas plant. It has reduced 150,000 tons of carbon dioxide emissions by preventing stubble burning across tens of thousands of acres. Inspired by this success, more such plants have been planned across the state.
19: We have kind of set up a blueprint wherein the same concept is ready to be replicated in other parts of Punjab and overall country as well. We generate close to 500 to 600 million tons of agri residue every year. Now, the volume of the residue which is getting burnt is to the tune of anything close to about 100 million tons per year. Now, the 100 million tons can translate into about 10 million tons of bio-CNG. What it means is that with this as a resource, we can meet almost more than 50% of our import demand for CNG. So that is the role bio-CNG could play in the overall energy mix.
15: Farmers like 44-year-old Gurdeep Singh are benefiting from these solutions.
20: Burning the time, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। शरीर उन्होंने बहुत तंग होंगे, लेकिन जब का हमारे यहाँ बैरपियो का प्लांट लगा है तो पहले वो उनके अपने बेलर थे, उससे हमारा पराली उठा के ले जाते थे बिल्कुल फ्री में, लेकिन उसके बाद हौले हौले हमने अपने बेलर खरीद लिए। अभी हम उसको अपनी और अपने गांव के किसानों की पराली को वहाँ उनको सप्लाई करते हैं, जिससे किसान का खर्चा कम होता है, जमीन जल्दी रेडी हो जाती है।
15: After the biogas is produced, the Verbio plant returns the stubble slurry to farmers as fertilizer.
20: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਲਕੇ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਬਣੇਗੇ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਊਰਜਾ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ।
15: As Punjab marches on with biogas, a Bengaluru kitchen has found alternatives to gas shortages.
1: Saturday on Japan Hour, getting to know beautiful Japan takes you on a pilgrimage of horses, hopes and heritage. Meet the sacred horse of Ese Grand Shrine. Horses that carry wishes to the gods. And the hardy Kandachimi horses, where every hoof print tells a story. Japan Hour, Saturday on CNA.
21: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya, visit our Mid-Autumn Fair, 20th August to 25th September.